ज्यों सुपनै होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन रार्थ काजा, ज्यों राखा खेत ऊपर पराई, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा खड़े, तिसकै पालै कछु ना पड़े, जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बनाहि आप करे रास, नानक प्रभ आगै अरदास, गौड़ी ग्वारी महला पंजवां, बहु रंग माया बहु बिद पेखी, कलम कागद सियान पलेखी, महर

कहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन डोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख यो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा।

राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन ना सुनिय कतु जाइए साध संगत बड़ पागी पाइए आठ पहर जिहवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाद इहां उहां सदा सुहेली हर गुण गावत रसनी अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेडे एह रस राती बहुर ना छोड़े आन ना रस कस लवै ना लाई कहो नानक गुर पए है सहाई गौड़ी गुआरी महला पंजवां मन मंदर तन साजी बार इस ही मत ही बस्त अपार इस ही पीतर सुनियत साह कवन बापारी जा का उहां वसाह नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जय कमन सो जुगत जित कर पीजै पाए लगो तज मेरा तेरै कमन सो जन जो सौदा जोरै महल साहा का किन बिद पावै कमन सो बिद जित पीतर बुलावै तू वड साह जाके कोट बन जारे कमन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत निज कर पाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले साह कहो नानक गुर कै विसार गौड़ी महला पंजवा गवाररी रैन दिनस रह इक रंगा प्रभ को जाने सद ही संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार है आज्ञाकार एको बनज एको व्यवहारी अवर ना जान है बिन निरंकारी हरख सोग दोहू ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

पंडार, रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सुबा, मूल ब्यादी व्याप सलूबा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अररंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म कर हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियाण को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

रंग सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सबते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याय।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाय बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनान।

ध्यान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

ना मोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट ना आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाई, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुरे अपने कौ बलिहार, छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मान हर चरण गही जय, कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवा, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाव, जां कहो रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जां का सब किस ता का होए, नानक ता को सदा सुख होए, गौड़ी महला पंजवा, जां कै दुख सुख सम कर जापे, ता को काड़ा कहां बियापे, सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ, जां कै अचिंत वसै।

देव आद पुरख अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रव तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर मित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीतर, पूरी शोभा पूरा लोकीक, कर्णहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवां, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्स पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लै संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवां, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाईए निदनामा, साध संग पूर्ण सब कामा,

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम सुमारे कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत मन

पाद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भाग्य।

करत जन सू है ता कौ माया अग्न ना पू है। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरपुरे की टेक टकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुरपुरा पीतिया लिवलाई। रहाओ हर का नाम दियो गुरमंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवां कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

पूरा गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मनह सुमाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्रापत जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवा, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आथाऊ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी मोहल्ला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊं जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवां पै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावै सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाणा।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाऊं, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ, तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी ते, ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किछ वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वडभागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसे

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बाल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरन सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाव रोग

कीर्तन सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वड भागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चढ़ उतरह पार साधु संग करहो सब कोई सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाई है मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हर मीत प्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाव चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तानेक साचे साकी मन मह टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट ना आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही डरपत डरपत जन्म बहुत।

नारायण जो जन गीते चरण कमल प्रेम भगती बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप ते काढ़े आप गुण गोविंद।

दोष्ट होय, कोट जन्म के किल विख खोय, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याऊ करे करतार। अपने दास को राखन हार रहाउ, आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वध ताप, तिन मारिया जे रखै न कोई। आगे पाचै मंदी सोए, अपने दास राखै कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ, साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाया आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाए, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण न्यास, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेतर पनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहों मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा धुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ श्रवण सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगोरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाउ। बनवन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वडभागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह प्राप्त सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

तृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुर गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम दीना नाथ सुनहु अरदास कर गै लेहु नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त

करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहा जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे।

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नारी।

आग्या है बसन सुहेला, यह संसार विकार सहसी मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए की आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी, जां को आए सुई विहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहुर ना हुए गो फेरा, अंतर जामी पुरख बदाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पंजवां, राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ, पंच बखादी एक गरीबा, राखो हो राखन हारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी, कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही, एक बात सुन ताकी ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी, गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते,

ना गसदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जागे ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुखदाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेहे प्रसाद एव पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भूमंडल सर्व सुमानो एक ओही सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीतलोही।

रहाउ। अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है, देहो दर्स हर राया। सोई हुआ जो तिस पाणा, अवर ना किन्ही कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी, कृपा निद दयाला, राख ले हो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रतपाला। जिसनो तुम है दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बांछे। गौड़ी महला पंजवां, हौ तां कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहाउ। महिमा तां की कीतक गनिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसरे अवर ना दाते। जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्स प्यासा, उनकी शरण परै सो तरिया।

प्रभु कृपाला राज जोगन अवध जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागने आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवां अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जाको सा

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोत चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायु देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुरु बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया

का अवर जे कर्ण कराम नु तिनमह पौ है जाम का रहाव अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महल्ला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महल्ला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसे परम मोह पहो साधी है रहाव वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महल्ला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाव संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जा को गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अग्न ते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महल्ला पंजवा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाव कटिया तेरा अहंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुरदिया नानक ता का पहो गया गौड़ी महल्ला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रव है से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महल्ला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाव बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं जितनो गौड़ी महल्ला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को तान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा सरन परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महल्ला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरे इस मीठी ते एहो मन हो रह रहाओ अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कमन जुगत जित पूरे प्रमतो हारिया अनक विधि कर टोरे कहो नानक कृपा पही साध संगत निदमूरे गौड़ी महल्ला पंजवा।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों,

केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रास मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पागियो संपत हरखना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो भेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब एह कहां कमावन परिया जब एह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एह रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता आगे ठहर ना पावे ऊहा काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर
ओहो सगली झाख चखाई है। नानक कह तो एहो बीचारा, जे कमावै सो पार ग्रामी। गुर सेव हो अर नाम त्याव हो, त्याग हो मन हो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो, हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना हुवै स्वामी, ज्यो राखो हो त्यो रही है। रहाओ क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लाभ हो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लाभ हो। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावो।

गुरमन की आस पुराई जियो, जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो शोभा वंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव

सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ, पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ, चरण पखार करी नित सेवा जीओ।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला पंजवा।

और साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे मालक जाना थे हो कर हर के

सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महल्ला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यू

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो। एह विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठतावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी। मूड़ता ही बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा। साधु इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। जाते फिर न रहाई रहाओ कठिन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई

प्राणी। गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा, अहनस औध कटै नहीं जाने, भयो लोभ संग होरा रहाओ। जो तन तै अपनो कर मान्यू, हर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रत्न जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन भयो चरणन सियो, बिरथा औध सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महल्ला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, शरण ताहे तुम पार रे रहाओ। वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे बहुर नह पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, भव सागर कह पार उत्तर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला, गौड़ी गुआर री। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद, निध सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया बिखमार। त्रिकुटी छूटी विमल मजार, गुर की मत जिए आई कार। इन बिद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ। एक सुख मानिया सहज मलाया, निर्मल बाणी भरम चुकाया। लाल पए सूहा रंग माया, नदर पई बिख थाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवे मन हर स्यों लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जम का पौ भागया। साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा। जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा। तुझ बिन कोए न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत। किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाए। सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज घर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति माहे सुमाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतुर सियाना।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाऊ अदिष्ट दिसे ता कहया जाई बिन देखे कहना बिथा जाई गुरमुख दिसे सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझे नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथो ना आवे और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बनास दूजी

0: निरपो जोगी निरंजन त्यावे अनदिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नरम केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाई अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी

माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै ना जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, बिन नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाउ गुरमुख विचो होमै जाए, गुरमुख मैल ना लागै आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै थौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लप

फिरे अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवह सेवड़ भागी, गौड़ी महला तीजी।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटह मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेतह उपावन हारा, मर जमह फिर वारु वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाई, हर जी

बताए साच ना छपे जे को रखे छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हमें माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जा हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई हुकम पछाणे बूझे सच सोई तू करता मैं अवर ना कोई तुझ सेवी।

प्रभ सोए नाम रतन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हिरदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हिरदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हिरदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हिरदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हिरदय धार नाम मिले पत पाईए नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाईए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावै तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए मन करहला सतगुर पुरख

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इने अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कह संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह होमै भागे, जास जपत वस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरि, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यों संग निवारे।

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबहु ना तरै तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करै इस मारी बिन जन्म ना मिटै इस मारी बिन जमते नहीं छुटै इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निध तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जा की है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवां हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

काम ना जो है दूत, जाके काम तेरा वड गमर, जाके काम होवे तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके

भांत, जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे कर की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सिंह सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

अमृत मेरी बाणी। गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निधि। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत।

करी नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेव।

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपन नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिन सत नाही छोड़ ना जाए जह पेखा तह रहया समाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो जिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दरड़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्स हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा कर।

रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे तन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों फूले गल जीवड़िया जियो बिन गुर अथ प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवे नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाणे नानक सच कर शब्द सियापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे हिन पल रहे न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाइए जो गुर कहे सोई पर कीजे तिसना अग्न बुझाइए हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा धन मिले मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी तां कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजै पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कमण मलाए बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारी गौड़ी महला तीजा पेर

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जा पिर भावै, गुरमती चित लाइए। सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइए। गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारी। नानक कामण नाह प्यारी, जा हर के गुण सारी।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटो आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजे नामे बिनसे, नामे सच समाए।

परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए मनमुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मनमुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सास ना घड़ी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिय प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

करियावहु नाह प्यारी। हों माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब दिशा हों सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया। मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया। लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वादाई कर लाल आया प्यारा। सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरख उपजिया। दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह। हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, जह साध संत इकत्तर होवह तहां तुझे त्यावहे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली। मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श त्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद अराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुरु पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्चल बिरदाया। भगत वच्चल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभु बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वासे आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवारे। पनीत करे तिस जनते, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिट है भ्रम नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम अपदेस, गुरुदेव मंत्र नरोदरा।

कह एक बखानन नानक एक अनेक पौड़ी ओ अंग गुरमुख कियो अकारा एक कह सूत परो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक तां कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आच है अच प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत तमामन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो।

सकै लवै न को। एक है आप अवर न हो, होवन हार होत सद आया। वाका अंत न काहू पाया, कीट हस्त मह पूर समाने। प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना। नानक गुरमुख हर हर ते जपना। सलोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक धन तन धन जन, आए ते परवान पौड़ी। आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बस है साधु कै संगे, अन बिन नाम त्याव है रंगे। आवत सोजन न महराता, जाको दया मया बेदाता। एक है आवन फिर जोन न आया, नानक हर कै दर्स समाया। सलोक यास जपत मन हुए आनंद, बिनसै दूजा भाव। दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समा।

आद संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिर ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीत कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीते हर मिले तेहे सूर तन वेश ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर एउ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम भउ काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तां स्यो प्रीत कर गुण निज गोबिंद राय फल पावहि मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तिर पू नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असनेहु कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

श्रद्धा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक तेह

सुख संपै बहु भोग रस नानक सादर वाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जिह रिद बसियो नानक ते ना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटाव हो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाय दुत्तर महा विखम एह माय गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया। सलोक माया डोलै बहु विधि

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ आपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेहे आप जनाई नानक तेहे मत प्रगट।

जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुर पूरे बिन बिद ना बनाई गुर पूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया सलोक वासुदेव सर्वतर मैं ऊन ना कतहू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहु वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुगद अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा लाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे रिद माही वा की राड़ मिटत बिन साही राड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा राड़ा गुरमुख राड़ मटाई निमख माही नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगनत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख भये

ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

0: गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। यह श्लोक आद अंत पढ़ना।
1: गौड़ी सुखमनी।

आसन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ अष्टपदी।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात इहो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब नसै। संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विरभूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान न मन ते हुटै सोच करै दे

अपमान। आप सुकौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिनह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन

भुवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पस्म संग होय अंध कूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाई थान थनंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जिह प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याहि सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहि त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसह त्याग कत अवर लुभावह जिह प्रसाद सुख सेज सुईजै मन आठ पैर तांका जस गावीजै जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पात से

ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप जेह प्रसाद तेरी नीति जात

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को मोह।

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अब महान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुले साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

तर सत्तर समान, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही अब महान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी ने धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ना पाईऐ धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड।

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

हाथ हुए ता सब किस ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचे, जे जानत अपने आप बचे, परमे फूला दह दिस तावे, निमख माहे चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवे।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

त्रिण समान कस संग न जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुखने आर जा घटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाय संत कै दुखन नीच निचाय संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता उए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकर ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक

नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना

बिरथा जन नहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम है थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल

आपे पाई, सब काटिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभु कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके कर्तव बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, ई अमृत इह मन तन तृपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आग्या मन मह सह आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए निकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, ये कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबत भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपहु होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बुद्ध हो हर कह नाए, दह

सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियानप सगली मना, साद संग पावह सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार,

एको एक एक हरिया पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन ताने अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथिन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाई तरिये संसार बिन भगती तन होसी चार सर्ब कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास

पेख दर्स सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

आपह तनी उनकी शोभा उनु बनी आपह कौतुक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत

नानक एको पसरिया दूजा कह दिजतार अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार आप एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई।

नानक फल पावहु, फलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे।

नानक तेह जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहिया भगवंत, तरन माहे आकाश पायाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, पान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वै संतर वाहे, चार कुंट दैद ते समाहे, तिसते भिन्न नहीं को ठाव, गुर प्रसाद नानक सुख पाव, वेद प्राण सिमरत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइए गुण।

देखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख माने करन कराव नहार प्रभ जाने अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावे तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किने कछ करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जो

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे, जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै

सुख जाते सब कछु होए, चार कुंत दह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर ना कोई। वेद पुराण सिमरत सुने बहु विद करो विचार, पतत उदारन पै हरन सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले नानक हर गुण गाय। गोविंद जस गाय हर नीत,

हर शरण परों हर राय भ्रम कटिया नानक साध संग दुतिया भाव मिटाए पौड़ी दुतिया।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वस्या सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो, सदा संगारे मीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित में है अनक उपाय, आद बिया

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिए नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरै साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपहाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारा वार आप तजो हो गोविंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट चौ

पौड़ी 14 चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रवया प्रभे एक तरन आकाश।

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण गोविंद।

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरो हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महला चौथा हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हम मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है। तुद जे वडहोए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है। तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है। तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

तिन हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओ सहत न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जां हर हर नाम त्यावे हर बातां आख।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिने अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवे राइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अपने।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करे माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावे जिस अंदर सहसा दुख पया।

सतगुर मारे। जे मेलन नो बहुतेरा लुचिया ना देही मिलन करतारे। सत संगत ढोई ना लहन विच संगत गुर वी।

सच साहा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे, सच सेव है सच वणंज लह, गुण कथ है निरारे, सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सुवारे, तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मोहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वडियाई।

चरण धोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यो लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम त्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वडभागियां सुहागनी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए पौड़ी। एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्निया, इको सुनिया श्रवण।

जिन हर बसिया मन माहे, हर दर गहति मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपव नाम त्याया, तिनको पव कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखियाहे, ते हर दरगह पैनाई है, जिन हर बुठा मन माहे, वे आप तरे सब कटंब सिओ, तिन पिछे सब जगत छडाहे, जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम जिवाहे, महला चौथा सा धरती पई हरियावली, जिते मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अरादिया आप करिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छडाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहु सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चाक चाक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल न आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

रंग चलू लै अतरपती सच्चे स्यों लगा ने हो कूड़ ठगी गुजी ना रह कूड़ मलम्मा पलेट तरे हो कूड़ी कन वडाइया।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम जरड़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिर जनहारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुंह जम मारिया तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

चौथा सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया, सतगुरु का रखण हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया, जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया, एह गल होवै हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम विचारिया पौड़ी, सच सुत्या जिनी अराध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग मह जानी है, जो गुरमुख सच रवे, हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे, जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास ग्रासना विसर, से पूरे पुरख प्रधान, करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगे ध्यान, तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान, सौंदे वाहो वाहो उच्चरह, उठदे पी वाहो करेन, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईए नाम अपार, भौजल डुबदियां कढ ले।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवा मुंडो भुले मुंड ते कित

को अपनी आपे पछताणी। अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान। दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए। राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याए पौड़ी।

मैं संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे तपा लोभ लहर है गालिया जिथे थोड़ा धन वेख तिथे तपा पिटे नाही धन बहुते डिठे तपै धर्म हारिया भाई एहो तपा ना होवी बगला है।

नो फल लगा सब गया कपे का कालिया बाहर बह पंचा विच तपा सदाए अंदर बह तपा पाप कमाए हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वे खालिया धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया इस तपे नो तिथे खड़ पायो हो जिते महा महा हथियारिया फेर इस तपे दे मोहे कोई लगो नाही एहो सतगुर है फिटकारिया हर कै दर वरतिया सो नानक आख सुनाया सो बूझै जो दइये सवारिया महला चौथा हर भगता हर अरादिया हर की वडियाई हर कीर्तन भगत नित गावंदे हर नाम सुखदाई हर भगतानो नित नावै दी वडियाई बख्शियन नित चढ़ै सवाई हर भगतानो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई निंदका पासुहो हर लेखा मंगसी बहु दे सजाई जेहा निंदक अपने जिए कमावंदे तेहो फल पाई अंदर कमाणा सर पर उगड़ै भावें कोई वह धरती विच कमाई जन नानक देख बिगसिया।

गुमान करहै मूड गुमानिया विस खादी मरियै आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिया जेहे कर्म कमावंदे तेवे हो पणिया जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा धणिया सलोक महला चौथा मनमुख मूलो भुलिया बिच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरै शब्द ना करहै विचार शुद्ध मत करतै सब हिर लई

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड़।

दाता किसै प्राप्त भाई रहो, जिस दे बधाता मन तन भीतर मौलिया, हर रंग जल राता साध संग गुण गाया, सब दुख है खाता नानक सोई जीविया, जिन एक पछाता। सलोक महला पंजवां, खखड़ियां सुहावियां।

दे मर गए मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया। जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा श्लोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरिय जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिय तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेहती आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम त्यावो।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उधरै मित्ता हर जस लिखें लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक ला।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै महला पंजवा प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हो पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हो नौ थन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिय पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

माया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाउ। पर हर लोभ अरलोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहाउ। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपज समाई नैन है देखत एहो जग जाई लाज ना मरहो कहो घर मेरा अंत की

पंचपदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह।

केहे कर जाता शब्द अतीत अनाहद राता जिन राम जानिया तिनह पछानिया ज्यों गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथै बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करहो जे बहुर ना करना सो पद रव हो जे बहुर ना रवना सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना उल्टी गंगा जमन मलावो बिन जल संगम मन महनावो लोचा समसर एहो व्यवहारा तत विचार क्या अवर बिचारा आप तेज बाए पृथ्वी अकासा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर

तित घर जाओ जे बहुर ना आवो। गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कत कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत।

जब लग रात तब लग नहीं नेहो रहाओ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह।

लाभ चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिठिया संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकसियो नीर सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना भई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

नहाऊं। इनकै सद बलिहारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावे रहाउ। जिहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाऊ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अन पहु पाया गौड़ी कबीर जी मन का सुपहु मनह दयापी मनह मार कमन सिद्ध थापी कमन सो मन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत ना हुई कहो।

बूज बूजनहार सुभागा रहाऊ, सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई, आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया, रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारी।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

आउ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

आधार जल स्थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह ना।

धारी ऊपर दुर्मत पांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे तेह तेरा जन पीना कह कबीर मन पया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरू भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहु काल है छाड़ को चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहु खोव है आग लगाए मंदर में सोव है अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर ल जाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाउ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवर ना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी, काको ठाकुर काको सेवक।

अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंता सुन गुफा मह आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मरतना सोग बियोगी रहाव खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है टूटे हुए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिय तोल ना तुलिय पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे झगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा परिया मन बौरारे नाचियो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नामन को तीर्थ कर

एव गौड़ी अगन न दह पवन नहीं मगन कस कर निहिर न आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यो कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो रहाओ ज्यो उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो गौड़ी।

तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सार गपानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सार गपानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांच।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान।

को होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए, रस और रहाओ।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

छाडोह परम प्रगट हुए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपे, सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाओ, काम

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

करे उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर में रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। वस्त अनूप ना

तास गुण गाव है, तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागी, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन, त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख, भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखे ना कोई।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना। ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई। कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा। हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा। खक्का एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड ना दह दिस तावा। खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

यह शत्रपत पासा छाक के ना रहो छाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाड कत आप बंधावा जज्जा जो

अर्दह उर्दह मंज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पव पान परोसौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध हुए, मन

उन मन रह तो तीन लोक की बातें कह, यैया जो जान तो दुर्मत हन कर बस काया गांव, रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया, ए रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया ए रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे अंत न जाए परम।

होए, एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो, घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पौन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एहे त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो कर

अकुल निरंजन एक पाय तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथा है चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में है हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

ऐनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोए, जोत दी वटी घट मह जोए, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम।

जीव की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याज अजामल तारियले, करन बदक जन तेऊ मुक्त भये।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मूसो को ना कह समझाई, जाते आवा गमन बिलाई रहाव। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जे साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारी है, संका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह।

अवस्था सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जा।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एक

दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम वसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावे धीरक भावे धक्के।

चेत तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला काल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का भाऊ।

कही है, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन

बाद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहों लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी होरन कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर।

अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिपत सल

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, ताके सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान।

सात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए हासा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

वेद अठसठ मज्जन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटै अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावह किसको किस समझावह समझ रहे किसे पढ़ावह पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपर

प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवरना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धू विनाशक। त्रिहों गुण आसमरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहै समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहो जागे हौं निस भर सोवां इउं क्यों कंत प्यारी होवां। सहो जागे हौं निस भर सोवां रहाउ आस प्यासी सेजै आवा आगै।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवे ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिय है लख संजिय है खाज है लख आव है लख जाए जा पत लेख ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लेख ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहलस हृदय जी वसे नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम सियो मेल लोका मत को पकड़ पाए लख मड़िया कर।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावन तां फीऐ जा एनस लागै भाव इक लोकी होर समशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहून खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

हाव धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवै उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगै रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल

हाँ, हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कहिए बंदा आसा महला पहला। गुर का शब्द मने मह मुंदरा, खिंता खिमा हंडावूं। जो किश करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावू। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी मह आसन बैसो। कल्प त्यागी बादं सिंह शब्द सदा तुन सोह, एनस पूरे नादं।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछै भाओ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगै

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण

हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाव, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाउ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लह जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हऊ मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाऊ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम भुलै संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्लै ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावे खसमे का महल कदे ना पावे दूजह लगी भरम पलावे ममता भादा आवे जावे दुहागनी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हरदावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई। गुर कै भै साचै साच समाई।

खबर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी दे वनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

हर जीव आप वसे मन आई, हर कृपा करी सतगुरु मलाई, निश्चल भगत हर सियो चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई, गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसे तां सदा सुख होई रहाउ, इस युग में निरपो हर नाम है पाईए गुर विचार, बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंद गुआर, हर कै भाणे जन सेवा करै बूझे सच सोई, हर कै भाणे सलाहिए भाणे मने सुख होई, हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

माया मल तारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहा नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर

धंधा, सबने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे पाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद पावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ। गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा। सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हौ हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हल बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ, एक फिरह उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै, एक सती कहावह तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुर राखे देख।

जन्म ना मरै ना आवै ना जाई हर सेती ओहो रहै सुमाई आसा महला पंजवां निज भगती सील।

दुए मनुख पहचाव। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन एहु मन लपटानी सहा व्यापारी द्वारे आए

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

नानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान

चौपदी एक घड़ी दिन समूह को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलूं प्यारी एक पाल दिन समूह को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी रैण पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाउ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी जोत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाहे न जालै जल नहीं डूबै। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाउ तोट न आवे न खुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार।

सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाइए नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरे सगल निदान इच्छा।

पंजवा हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत का।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की भरपुर धार रही।

पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय आठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

आद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे है, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

यही व्यवहारा आज्ञामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

चित कछु ना लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भये कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवा, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुरपूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे, रहाउ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

आए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारे। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरब हस्ती अर घोड़े। लाल लाख बह आनी आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अब मानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म मैं सोई सगल जगत धन अंध को।

सुख नहीं दरगाह ढोई, जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै, आगे ठौर ना।

बाहर कोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो है मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राख है मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा ताका जन्म मरण दुख भागै।

रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है।

मन की होर किस पह आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

ते मुक्त भए अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काढ़ लिए निरपव भए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य।

की कृपा तिसको बिपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

खजाना आसा महला पंजवा तीरथ जाओ ता हों हों करते पंडित पूछो ता माया राते सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप कुल विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वास आया नानक गुरमुख तरी

जा तू चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

नैन निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुन गावो संत प्रताप साध कै संगी हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही, घट

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोहो सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

क्रोध अहंकार बगूते, हर सिमरन कार हर जन छूटे, सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाउ मोह परम बहु जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण त्याया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझ है हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ सरनाई,

क्रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवै को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो

जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ कर्म है अमृत आनन सारे खिसर गयो भूम पर डारियो साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनक रंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै। ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ। उनकै संग तू ग्रह महमाहर, उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत,

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

काज कमाया, कर कर अनर्थ बेहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

संबाह निकसया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पच

बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागै होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वड्डे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब खंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हार।

सगल धर्म हर के गुण गाम, महा पवित्र साधका संग, जिस भेट त लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कह

गुर लाए, नानक आए पए सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर।

ते लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा।

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बहंदा, हौ मैं पचै मन मुख मूराखा, गुर नानक बाहा पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, ईहा ऊहा कामना प्राणी, संत तृपता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए।

कै मन बहुत बिगास जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मह लिखिया तुरका रहा दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सच।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवा लाख भगत आराध्य है जपते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी तेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाउ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निधान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निधान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब को

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद कणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

हर रंग माणिया आवहो संत मलाह हर कथा कहानिया अन दिन सिमरह नाम तज लाज लुकानिया रहाउ जप जप जीवा नाम होवे आनंद घना।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए। रस कस सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह। मिल पापा मुंचह तत्वी।

कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका इस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाण चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया आसा घर नौवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद चितवौ चितव सर्ब सुख पावौ आज्ञा पावो के ना पावो एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हौ मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सतगुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताइय अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी।

गंधण वहन सुने उर्जा वह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म सिंह रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजे अरजादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ धंध दुर्गंधे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटे बहुर बहुर जनमाते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे।

हाव पलक दृष्ट देख भूलो आक नीम को तूमर जैसा संग बिसियर स्यो है रे तैसो ही एहो परग्रहो बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी साजन स्यो बैराना सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरेओ जिस गुर पूरा कहो नानक पाव सागर तरियो पये पनीत शरीरा आसा महला पंजवा दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ मूड मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांधे फिर पाछे पछतानी प्रभ मेरे सब विद आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कह हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुखै नाही परवेसारी, साजन संत हमारे लीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाए। एहो जन्म पदार्थ

बारी आसा महला पंजवा धूप दे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एह मन त्रिपताना बहुर न कतहु तावो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण दे।

महा के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचहो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना।

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपां भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे ना

भौजल लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो।

नाम चराग हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई।

किरमें अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे, मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां, अगम अगोचर दर्श तेरा। सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी। सतगुर बख्शिया हर नाम, कल युग उधारिया गुरदेव। मल मूत मूड जे मुगद होते, सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता, सब श्रेष्ठ धरता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो संत संगाहे नाम त्यावो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवां ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्स प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो इस बिन को नाही प्रभ सरनी आई सर्व फल पाई सगले दुख जाहि जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आहि आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हौ कर्म कमावै बांधियो नलनी भ्रम सुआ कहो नानक जिस सतगुर भेटिया सो जन निश्चल थिया आसा महला पंजवां घर चौदवां।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए।

प्रभ त्याव भ्रम भीत जीत मटाव निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

कीमत पाई। सब दुख तेरे सुखर जाई, सब दुख मेटे साचे नाई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। त्रे पवन सूजे आप गुआवे, बाणी बूझे सच सुभावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक धन सवार नहारा। आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान। मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार। लेख असंख अलेख या

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन।

है दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच रोवह मीत, त्रै गुण रोवह नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सौंपो कृष्ण परीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरी जै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन धीरा।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम त्रिपतास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाणे, गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास। किल

नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल साकत देवाना बानखंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हौमै कौरा रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे राखह कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपह जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखह, बिन गुर शब्द जन्म के लेखह। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: मुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जी समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकी कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आखी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यों त्यों राखे त्यों रहा मुख नाम हमारी रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचों दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वडियाई गुरमुख होए निहाली है।

एको अमृत बिरख है फल अमृत होई, अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना भरम ना भेद है हर रसन रसाई हुक्म।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी।

सार हर जीव मन वसै सब दुख वसारन हार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारी निर्मल नाम रखै उर धारी साची सोभा साच दुआरी सेवट भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर तार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावै भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल की

जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमे मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदिया घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझे विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे, दुख कदे ना होई, गुरमुख हम मैं मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, माति उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले, जान नदर करे, किले विक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया।

सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिले मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाऊ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा हुई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास

बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाई रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़ अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है।

नानिवह दूजा भाऊ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाव सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब हाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन शब्द हौ ना जाय नानक नाम रते तिन हौ मैं।

दी आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराएंदा, दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया। ए तेरी सिरकार इक ना बख्श है मेल लह, एक दरगाह मार कड़े कूड़ियार। एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए। नदर करे जिस आपनी तिस नो भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वी।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाउ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावे फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवे हों मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनाह बख्शाए लयन मेले मेलन हार नान

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साह सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाहि खिन माहि, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निहचल पावह ठाव, मीत साजन सो

चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे।

जलिया जमराज की रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कर भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम अपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहू क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

सब जग आया काके कंगे काल भया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

रूपया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कके काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले ओहो मूड़े थत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार न पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख होवै ता हर रस पीवै जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किनै ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारै राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया राग आसा महला पहला शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलियाला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभु कृपा करी सीजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावै ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औं पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदरी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिलै मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी आसा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम।
पन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तेरे नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज घर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागर रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजे दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई

आद पुरुष अपरम्परु तारीनाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

सिरजनहार जीउ सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारनहार जीउ दुख बसारनहार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जीओ तू सबनी ताई जिते हों जाई साचा सिरजनहार जीओ जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जीओ ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जीओ जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जीओ ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जीओ हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै विटोह कुर्बान जीओ नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जीओ तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जीओ जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंड लागे, गुरमुख सदा संभाले, यूं कह नानक जह मन तू धामदा, तह हर तेरे सदा नाली, सतगुर मिले तावत थमिया, निज कर वसिया आई, नाम विहाजे नाम लई, नाम रहे समाई, तावत थमिया सतगुर मिले, दसवां द्वार पाया, किथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै, जित शब्द जगत थम रहाया, तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहे आसमाई, यूं कह नानक सतगुर मिले है, तावत थमिया।

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

मुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया, अनहद धुन वाजह नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाता, ज्योति ज्योत समाणी, मन मुखा मन मुख मोए, मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे, दुर्गंध मड़े चित लाया राम, लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, ज्यों रंग कसुंब दिखाया, खिन पूरब खिन पच्छम शाई, ज्यों चाक कुम्हार पवाया, दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोग हैं, दुख की बिरद वधाई, नानक बिकम सहेला तरिए, जाया वै गुर सरनाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

मुख गवाई। मन तन सीतल शिंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, कलू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परमदा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै।

रमो रम उचा गुण कहते अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन अंतरे राम नाम वसै किन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

आम सते सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम। मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाई।

भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपियै सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, हत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रतीं चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ लेवो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

को होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई। हर हर नाम अमर

जियो जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार।

निर्गोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरुष अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रह दिन।

मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

ताए गुर हर मार्ग चाली, मेरा मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली, गुरमुख प्यारे।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हो।

जिथै जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पू

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा।

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर टुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेल सा गुर नानक पाया मेरे प्यारे तुर मस्तक लेख सा।

सहज भया, गृहवास आया मंगल गाया, पांच दुष्ट ओए भाग गया, शीतल आघाणे अमृत बाणी, साजन संत बसीठा, कहो नानक हर सियों मन मानिया।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे, बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना।

हा कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर सने हो चित व्यास घनी कद दिन यर देखी है गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है हर प्रीत करी जय मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया थिर साधु सरनी पड़िया चरनी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

गीत की जय। आस्था महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझह आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होई गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझह दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई, भेटत साधु संग जमपुर नह जाई। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल तल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वचल हर बिरद आप बनाया हासा।

अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

संत पास सेवा लागी है। जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

करों कर जोड़, हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। तज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखागामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते,

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रहो राख लीने मोहो ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निद सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

इंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर भर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया।

देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कपट कमाव।

आया जल थल मही अल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही भाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड

आद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञानहीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे

वह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं, सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया, जिनी विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया, सलोक महला पहला।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत

समावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

तुहु उपज कित संजम एह जाय। हम मैं एहो हुक्म है पय किरत फराय। हम मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनहो जनहो हित संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंद पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन्हें पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस दे बाण अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार इस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

दूजा योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा एक।

गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग।

खंतर पाहे, जुज मह जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लै आया, बिंद्रा बन मह रंग किया, कल मह वेद अथर बन हुआ, नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया ने।

आई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावहु गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे तां सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

तेत। जित मुख नाम ना ऊच रह, बिन नामै रस खाहि, नानक एवै जानिए। तित मुख थुका पाहि, महला पहला। पंड जमीए पंड निमीए, पंड मंगण वे आह। पंडो होऐ दोस्ती, पंडो चलै राह। पंड मोआ पंड पालिए, पंड होऐ बंदान। सो क्यों मंदा आखिए, जित जमहै राजान। पंडो ही पंड उपजै, पंडै बाज ना कोई। नानक पंडै बाहरा, एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाही है, भागा रती चार। नानक ते मुख उजले, तित सच्चै दरबार पौड़ी। सब को आखै अपना, जिस नाही सो चुन कड्डी है। कीता आपो अपना, आपे ही लेखा संडी है। जा रहना नाही ऐत जग, तां कायत गार बहंडी है।

आए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पाटे अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर।

कह तारी देख है कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु विसारी है अपना।

है आप तिस विच जंत उपाई कै दिखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावहु जित पै बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटै रहाउ माया फास बंद नहीं फारे हर मन सुन ना लूके आपा पद निर्वाण ना चीनिया इन बिद अपयो ना चूके कही ना उपजै उपजी जाने भाव अभाव बिहूणा उदय अष्ट की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग ओए हर के संत।

आदि मुखों अपरस कहावह सदा सदा फिर है अभमानी सगल कुटुंब डुबावह जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावे कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे आसा।

गया न बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन्हों जाया।

हाल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे

रहाओ बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे बंस को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिय, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

काल पन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो शायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत है ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिवलावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर धन पायो अंते चलदिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संत हो अन तन कछुए लै ना गयो आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया, मुगद कह धन मेरा, जमका दंड मूंड मह लागै, किन मह करै निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावै, आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद ना बरख है नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते, मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे, आसा एक टुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछान्या।

पूरे चराए कह डिसियर को दूध पियाए सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत सुआन सब करी कराया जो तुर लिखिया सो

पहला पूत पछहरी माई गुरला गो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार भैंस चरावन जा।

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे अठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीम न की आस करह, जम ने

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो अस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब के

तार चिरायु हो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कांसिक जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान। बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जे पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब खुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई। अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देख खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख रहाव साचक तेब बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

कबीर जी होके दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई हासा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रम

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तौ पर साचे हर गुण गाए कूदह अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

ये तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर फिर जोनी आवह मनु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई इंस नारायण वेद नहीं शास्त्र।

मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुदबदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी। कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

घर जन्म दैला गुरु उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत सरन तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊषा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाऊ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिनस गया।

तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बेख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाकै अशली प्रभ पहचानिया धन्ने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद सा

वध भागा रे चेत चेत सकी ना दयाल दमोदर विबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राख ऐसा खसम हमारा।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाई रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरी द खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहूम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसे वाट मरीदा जोलिए सैल लंघंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलिया से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछे समान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे।

आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेव है गुर विचार रहाव राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोहो लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

पाई, ऐसा सतगुर सेवियै मना, जित सेवै गोविंद प्रीति उपजै, अवर विसर सब जाय, हर सेती चित गहर है, जरा का पौ न होवे, जीवन पदवी पाए रहाउ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईऐ, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै, ता सदा सुख होए, नानक ऐसे सतगुर की, क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे, गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

आए, जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राए तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमे मारे, ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ। सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस है पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे।

फिर रहे ता परम विचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुग्ध है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाए जेता पढ़ पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मनमुख।

जो आप ना पछाने सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

एव मोकौ राम नाम पर जास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन्हा

प्रीतम मन प्रीतम मेल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सागर।

दिन हर प्रभु पुरख ते आया, मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई, मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जा हर प्रभु भावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, बड़ भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया, सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया, आप कृपाल कृपा प्रभ धारी, हरे आपे गुरमुख मिले।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाउ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिउ चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौ संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिव लाई गुजरी महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चित्त वह उद्दम जा आहार हर जियो परया।

से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव शास्त वेद सिमरत सब सोधे सब एका बात पुकारी बिन गुर मुक्त ना को पावे मन वेखो कर बिचारी अठ सठ मज्जन कर इशनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन लाहया धूखा हर तन ते मैं नव निद पाई हाथ चरयो हर थूका खाव हो खर्च हो तोट ना आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जाप हो जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो।

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछु कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट कट अंतर सर्ब निरंतर रंग

जिस मानुख पह करूं बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस का।

कोली उच्चा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लभी गुर पूरै दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया बिन सुनाया वह जाई हर जप माया बंधन टूटे पये कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका सा तिन्ही रख लिया सगल जुगत बन आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहण ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही वांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कमन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद।

जतर कता गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानत जन को कशु ना आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाए तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाऊ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर भोर।

सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै, गुर पूरे की वडियाई। अब चल नी।

त्योहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवां घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाव रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरन साधु निर्मला गत

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊं कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगी दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पैर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केतु हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरा ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

सिख कथी अले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी काम क्रोध अहंकार तजी अले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अली

पूजना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेख करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आय तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ। ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं। गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाए आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए अन दिन नाचै सख्त निवारै शिव कर नींद न होई शक्ति घर जगत सूता नाचै टापै अवरो गावै मनमुख भगत न होई सुर नर विरत पख करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुम्हारी जी जंत सबे ही नाचे नाचे हैं खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाचे हैं जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत ज्ञानी जिनको हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन।

बंदव पतत पावन देव तै त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार धरनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुद्ध करना मैं चिंत मेत पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करी खुआर पौड़ी, अपना आप अपायुन कदों होर ना कोई, मता मसूर ते आप करी जो करी सो होई, तदहों आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदहों आपे आप निरंकार है ना उपत होई, ज्यों तिस भावै तिवें।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

बसियो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सु

पाए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ताडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सद ही रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी

नानक हुकुम ना जातु खसम का, जे रहा सच सुमाए महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाए। पूरे गुरते पाईए मनमुख पल्ले ना पाए, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा। गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा, श्लोक महला तीजा। त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हों मैं पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत कोई सुख ना पावे, अंत गए पछुताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस हों मैं विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरनी आए पाए। महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है, ना तिस भगत ना नाम। शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव, तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव। कोय धर्म रलाए ना रलन, उना अंदर कूड़ सुआव। नानक करता बनत बनाई,

अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदय सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन हर पाव है गुणी निदान। हर सुख दाता मन वसै हऊ मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता। अंदरों कपट वकार गया मन सहजी जिता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता। आनंद नहार के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। सलोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिव लाए। सतगुर पुछे सच संयम कमावे हम मैं रोग तिस जाए। हर गुण गावे है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाए। इस युग में है को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पी।

काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाइन।

ताय गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा एहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाई नानक मन ही

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर योगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

कर्म प्रापत होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

नानक दर सच्चा शोभा पाई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभमानी भरम भूले नदर ना आवनी मन मुखियां दे अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर भेख।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाऊ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापी नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना

मत वन्य मित्र असा डड़े से खाट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठियां जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे बोझने हाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो धनी मलन नानक सुख संभूह सच महला पंजवा जिमी वसंदी पाणी है ईंदन रखे पाए नानक सो सहो आहे जाके आडल हब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदैही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे विसम

सगल अपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया पाइन सब निदान साहिब तुठिया सलोक महला पंजवा लगम लभन हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना पस

आप दया धारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

मुहूर्त कड़ी मुहूर्त नह विसरै नानक रविया नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िए फौज सतानी हाथ पंचा जोड़िए दस नारी अवतूत बेन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़िए त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए सलोक महला पंजवा किलविक सभे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेचा उपजह नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खवंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम

का लिया जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किसे आपे आप बेअंत अपारिया गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अंदिन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जूनी नह पवै सब किस करते हाथ।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना हुए तेरा आवन जान रहाउ। सब तै उपाई भरम भुलाई, जिस तू देव है तिसै बुझाई। सतगुर मिले ता सहसा जाई, किसहों पूजो दूजा नदर ना आई।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

ठाकुर लिव लागी जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम पई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेल है मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गोल गोली है।

संतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हमरे जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी। जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ती रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती। ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाते चुकती। छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

अग्ञान अंधेरा संती काटिया जी दान गुरदैनी कर कृपा कर लीनो अपना जल से शीतल होनी कर्म धर्म किस उपज ना आयो नै उपजी निर्मल करनी

कहा रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखाहा। ते बड़ भागी ते पतवंते, ते पूरे साहा। सुंदर सुगड़ स्वरूप ते।

रहाउ जिन किया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन धारा तिसह त्याग अवर लपटावे है मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना।

जिस लाड लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझै कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

हर चरनी लागो जिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के सरन स्वामी की अही है कोट पराद महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सरन ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विख नास है

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहो अनग्रहो स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ आदु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव

जाको उपजी। छोड़ न कतहु जाता रहाउ, बैठत हर हर सोवत हर हर। हर रस भोजन खाता, अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो। साधु धूरी नाता, सफल जन्म।

जन चरनी निस बासर दर्स पामो तन मन अर्प करूं जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरों प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लही है।

पाए छोड़ न जाए सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहू जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पीतर, तास ग्रास उचारियो। नानक उठ गई जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन भेख, मोहन रहत नरा।

हरि गुरमुख जान रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान, कहो नानक पाए है परम निदान।

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचरत दिन रात।

माने उल्टी रे, साकत स्यो करे उल्टी रे, झूठ है कीरे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग ना छुटकी रे रहाओ। जो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू कीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा ने।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै, स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो, कहो ना कान धरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जां ते काज सरै, देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव, तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीर्थ प्रेत पकार, आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार, देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ तो मैं हर हर करिया तौ तो सुख सहजरिया रहाउ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाउ इन मह राउ रंक कौ करी राउ रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगै गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जान के

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

तिनका संग मल उतर मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए

राम हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जियो आवन जान सबाए राम आवन ता जाना तिनह किया जिन मेदन सिरजिया इकना मेल सतगुर महल बुलाए एक परम भूले।

यो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधात तुरहु लिखिया तिना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

मेल कंत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करूं उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि नाती दी है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह न सकी एक तिल है नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा दे दे भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयम पै संत सरनी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवां कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाना राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूरख मुग्ध अना

भगतन की मन तन लगो। हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़े सो आया। रिद सिद्ध नव निदहर जप, जिन्नी आत्म जीता, बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है। साध साजन मीता, जिन्नी सच वणंजिया हर

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वदाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी

चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाई है, प्रभ ते आई है, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागणी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उधार नु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तार नु, जो सरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहा पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विशुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

0: तपत ना कत है बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मनहु ना बिसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवरव सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

बंधन रहत करता किया अपना पावने कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समरा

मैं प्रगट भई तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लई छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई है, बिन नाम हर के।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हट

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचो आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है। हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनो त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा, सारस ना जल जाऊ। जिन हर का नाम वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाए प्यारिया पौड़ी। हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए। हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए। हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए। हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुभाए। गुर

आई बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज।

जगत उपाया करके दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्ध उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुरक।

0: दिन रहे सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु,
1: भौंक मोए बिल लाय।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजे, आप वसै मन आय, नानक नदरी पाईए, आपे लय मलाई पौड़ी, आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आप कथै आप भिजे, आपे ही बह पूजे करता, आप परपंच करीजै, आप परविरत आप निर्विरति, आपे अकाथक थीजै, आपे पुन सब आप कराई, आप लिप्त वर्तीजै,
1: आपे सुख दुख देवै करता,
0: आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सीखा अंदर हो जोर छाड तू, पहो कर झल गवाए, गुर कै भय कीते निस्तरे, भय विच निरभउ पाए, मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

लाती जा। एक सतगुर की सेवा करह चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी

पर बुझे सब आपे, एक थैं आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जां आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, थादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस कृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

जित हर प्रभ मेरा चेते आवे, हर स्यों प्रीत उपजे, माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुखदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके, मर जमे होए खुआर महला तीजा, प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोई नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब घटे अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही।

लाहे ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै ज्ञाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना उस्तत बरन ना सकी है।

बंगड़ियाह जो सह कंठ ना लगियां जलन से बाहड़ियाह सब सहियां सहु रावण गईयां हों धाती कै दर जावां अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरों वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ।

गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए तिना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाव दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्म जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा

सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन फिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर साचै मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिया आपनड़ा प्रभ नदर कर देखे नानक जोत ज्योति रलिए जो

पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर

खाले, जिसनो नदर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वडहंस महला पंजवा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावे, सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाव, लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पुगीसर भोग है भोगा, कट कट वस है जान है थोड़ा,

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभु दाते, जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, वडहंस महला पंजवां, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, वडहंस महला पंजवां, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हौं सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

तेरा अंतर भूख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वञावना।

आए तम लै लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारे सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई।

नानक सा धन मेल लई पेरे आपे साचै साहि सुवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये पिर रव रहे आपर पूरे राम पिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर वस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा पिर भावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन वसाए, बूझै गुर बीचारा, मनमुख खेती वणज कर थाके, कृष्णा भुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चै शब्द सुपहाए, हर वापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम, गुरमति मन निज कर वसिया, सच्चै शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो।

पारा। खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगहा सुतियन उभे करन पुकारा राम। उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया। मन मुख संता नाल वैर कर

आखी है और करना किछु ना जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजे राम, रसना हर रस पीजे अंतर पीजे, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रीजे, नानक नाम रते से निर्मल, होर हम मैं मैल परिजे, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूर्ख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख एहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे भंडारा, गुरमुख होए सोई बूजे, सच सवारन हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर कहना किसु न जाई, नानक बिन नावे परम भलाया, एक नाम रते रंग लाई।

सच्चा मन पाया सच वसाया शब्द रत्ते अंत नबेरा नानक नाम रत्ते से सच समाणे बहुर ना पवजल फेरा माया मोह सब बरल है दूजे।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई, हूं मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते, हूं जीवा सतगुर देख सरसे।

देव। हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरे आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा। हौ गुर बिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हौ ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुर बिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

वह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख।

खाई, किस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख अमृत पीवा, हरे आपे शरदा लाए मलाए, हरे आपे आप सवारे, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे, हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम, हरे आपे मेलै करै सो होई राम, जो हर प्रभ भावै सोई होवै, अवर न करना जाई, बहुत सियाणप लया न जाई, कर थाके सब चतुराई, गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई, हरे आपे पुरख निरंजन सोई, बड़ा हंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे, सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे, जिनको हर प्रभ कृपा सारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर

जाड़ हर हर नाम रतन्ना राम, जाड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासी मिल जल जलह।

पाला, मात पिता स्वाम सज्जन, सब जगत बाल गोपाला, जो शरण आवे गुण निदान पावे, सो बहुड़ जन्म ना मरता।

मन इच्छेड़ा फल पाइय राम। मन इच्छ पाइय प्रभ त्याइय, मिटह जम के त्रासा। गोविंद गाया साध संगाया, भई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाइय। बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याइय। दरवाजे है अनहत वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगम अगोचर ऊंचा। गुण बेअंत किस कहन ना जाई, कोई ना सकै पहुंचा। आप अपाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे। बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजह है अनहद वाजे। राग बड़ा हंस महला पहला, घर पंजवा अलाहणिया।

पूर्वकमाय धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जान आगै सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्भ कीजै जित सेवै दरगाह सुख पाई है नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म ना चल।

है परवान। नानक किसनो बाबा रोइया, बाजी है ओ संसारु। कीता वेखै साहिब अपना, कुदरत करे बीचारु। कुदरत बीचारे धारन धारे, जिन किया सो जाने। आपे वेखै आपे बूझै, आपे हुक्म पछाण। जिन किस किया सोई जाने, ता का रूप अपारू। नानक किसनो बाबा रोइया, बाजी है यो संसारु। वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा परवदगारु। जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा अलख अपारु। दोए कुड़ जोड़ विछोड़ियन, गुरबिन घोर अंधारु। सूरज चंद सिरजियन, अहनस चलत विचारू।

ऊठ विदनिया मृत कड़ा अंग नड़े बारी तुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारी रोग हो कंत मेहली हो सच्चे के गुण सारी जल मल जानी नवा लिया कपड़ पट अंबारी वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारी जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारी जीवत मरै सो जानिए फिर सचड़ै हेत प्यारी तुसी रोवो हो रोवण आई हो झूठ मुठी संसारी हो मुठड़ी धंदै धामणिया फिर छोटियाड़ी विदनकारी घर घर कंत महेलिया रूढ़ै हेत प्यारी मैं फिर सच सलाहना हौ रहस्यड़ी नाम पतारी गुर मिलिया वेस पलटिया सा धन सच सिंगारू आवो हो मिलो सहेली हो सिमरो हो सिरजनहारू बैयर नाम सुहागनी सच सवारनहारू गावो हो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म बीचारू वडहंस महला पहला जिन जग सिरज समाया तो साहिब कुदरत जानोआ सचड़ा दूर ना भाली है घट घट शब्द पछाणोआ सच शब्द पछाण हो दूर ना जान हो जिन एह रचना राची नाम त्याए तां सुख पाए।

हारेव रुव माया मुठड़ी तंदड़ा रूवण हारेव तंदा रुव मैल न धोव सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूर राखे नानक सहज सुभाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

भया मनहुच्छा गुड़ सा मक्खी खाया नाम अरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रू वोज।

गुरुमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाय। जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे। सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे। सब जागे आप उपायन आवन जान संसारा माया मोह खुआयन। मर जम्मे वारू वारा मर जम्मे वारू वारा वदह बेकारा। ज्ञान विहूनी मूठी बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो। रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोईए। रोवे कंत वसारे सब जग आप उपाय आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए। भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाय। रंड बैठी दूजे पाई माया मोहे दुख पाए। आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी। दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे। लभ लोभ चेत लाए सो फिर

काम क्रोध विनाश सतगुरु का भव छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई।

मनाय विसपे कै थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजै भरम भलाय पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योति सुभावे।

ना हो गई अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिउं लिब लाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जिते हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई है नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया सच्चा प्रेम प्यार मन ही ते मन मानिया गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस

परमी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविय शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

आ पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है, और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लख ना लखना जाई। पूरा गुर वे खालिया, शब्दे सोजी पाई, पुरखे सेव है से पुरख हो वह, जिन्नी हों मैं शब्द जलाई।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास।

हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाए हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सर्द गई। हर नाम हमारा वणज,

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया।

हो गई। जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार। एक आपे बस मलायन, दुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार। दूजे भाई

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुम्हाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

कियो, हर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावहो काही जियो। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागहो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखहो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम वसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अपागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपियो परम सुख पाई निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाई।

तब पाया छबदे हम मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धामदा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर

आप राखै जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंतकाल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी। प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी। आपस कहो

अंत गए पछताई, सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए, शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कह पाए, सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई, फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ, यो कटंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है, गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई,

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पा।

आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहू, आपे वणज व्यापारी।

प्यारा गुर केवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए।

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सबना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सतगुरे आप।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभे आपे तोल तलाया आपे साह आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप

आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे तुल परवान, आपे अतुल तुलाएंदा प्यारा, जन नानक सद कुर्बान। झूठ महला चौथा, आपे सेवा लाएंदा प्यारा, आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाउ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

गावह हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, ता भ्रम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सब ना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया, एहो पूरन तत बिचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारेउ, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सरवणी सुनिए रसना गाईए, हृदय त्याईए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ वाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पाव हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गाव हो।

युग अंतर गुरु नानक की वडियाई चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

मल मल धोवा एहो मन तै कू देसा सुन मीता हौ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै सरन परीजै करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेहे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेहे नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेहे गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेहे प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साद लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी
चोट महला पंजवा हम मैले तुम्हें उजल करते।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारी।

अब कहाँ करे तू, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रत्ते बिस्मादी।

सुख नहीं पाइए। हो रेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दा मोदर दयाल माधवी पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। चौथ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिचरत आन मलाया। पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते।

तेरा अंध मंगल बिसरामा मन बाँचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

तब हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी

गुर पूरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावुहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रतपालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

गुणि गहेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कहा निहोरो चौठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई चौठ महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पै कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानू नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाउ अंतर बाहर थान तनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडे अवन ना कोई चौठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हारै राखियो बारिक

भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पय अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

पंजवा दुर्त गवाया हर प्रभे आपी सब संसार उभारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा सहारी अपना बिरद संभारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावहु मन तन देह सुखाली रहाव पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे किसका परवासा बख्श लए सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा सूरठ महला पंजवा बख्शे अपार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उभरे कार्य सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करह मेरे प्यारी हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाखिया

आप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए सोरठ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारो नानक पात्रा की परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हो आगे तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।